0: आवाज बहिन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज
1: ताजा खबर।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: निकट माता दीदी बहिनी, विकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बज्यो।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्न को ठीक 12 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: निकट मा दीदी बहिनी निकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी 95 थोपलो

0: जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेघहर्ज को सहकार में कुसुमा नगरपालिका पर्वत
1: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी यो रेडियो दीदी बहिनी 95.2।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

World Cup 2026 का अवसर में सीजी टीवी ने ल्याएको छ 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 सम्म को कैशबैक सजिलो 0% EMI को सुविधा नागरिकता भए पुग्छ World Cup to World Cup सीजी टीवी खेल संगे भरोसा संगे।

0: चौ चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखा है हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर पढ़ दिलवा
2: आंगी समझो लोटी पढ़ती हूँ छांता ही गुदी
1: बढ़ती आ बढ़ती बल लोटर खाली पढ़ती बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बायबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक पाँच बज्यो।